Radio Talk, hello. नमस्कार, रेडियो चौतारी 91.4 मेगाहर्ट्ज 91.4 मेगाहर्ट्ज

नमस्कार, रेडियो 94.1 थोपलो 4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, हेलो हेलो। नमस्कार, रेडियो 94.1। नमस्कार, रेडियो 94.1 थोपलो 4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, रेडियो 94.1 थोपलो 4 मेगाहर्ट्ज।

0: माता जी नमस्कार।
1: नमस्कार भैया।
0: जुलीराम भागरे पूरे गांव के सुनसान छ के हो
2: तो लावरे आए बंजन सब से पचीस खाई
0: लो हो दाजू
2: ल।